0: Hello and welcome. My name is Reet Kaur Sahani, and you're watching Eddie TV. Got a whole lot lined up for you, but let's first take you through the headlines of the hour. RSS Chief Mohan Bhagwat has strongly backed India's Gen Z, saying the youth should be trusted and the democratic protests should not be branded as anti-national. Bhagwat has called for dialogue instead of a generational divide. The centre has stepped up efforts to build consensus on delimitation, with back-channel talks underway with opposition parties. Sources say the outreach comes as political consultations gather pace ahead of a wider discussion. The proposed changes to the FCRA have triggered fresh concerns among Christian organisations. Home Minister Amit Shah has met church leaders, assuring them that there will be no retrospective action as Parliament prepares to debate the bill. The government's engagement with Meta is set to continue, with more meetings expected in the coming few days. Content moderation, algorithms, deepfakes and illegal online content remain at the centre of discussions. Well, recent big breaking news coming in at this hour. Well, the leader of opposition, Rahul Gandhi, has now reached out to Ranchi protesters. Rahul Gandhi has now spoken to the protesters over the phone. There's been a 10-minute conversation that the leader of opposition has had with the Ranchi protesters as Rahul Gandhi reaches out to the Ranchi protesters. He's in fact even spoken to them for 10 minutes is what we're being told. The outreach, remember, comes hours after Rahul Gandhi broke his silence on the Ranchi students' protest.
1: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
2: डेवलपमेंट हियर इन रांची वेयर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केम एंड आल्सो अपेरेंटली राहुल गांधी स्पोक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स। रविंदर इज वन ऑफ द यू नो स्टूडेंट लीडर हियर। रविंदर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
3: एसडीओ सर आए थे,
2: क्योंकि
3: हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन का डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर्स है, उसके बारे में उनको अवगत कराया था। हम लोग इंतजार
2: आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से, तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई।
3: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि एसडीओ सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे। आए भी, लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, कल तक क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो।
2: लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
2: डिमांड में या मेंबर्स में
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
2: आपकी बात, क्योंकि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई, आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
3: जी जी, मेरा बात हुआ।
2: क्या कहा उन्होंने?
3: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे। हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम का रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए।
2: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
3: वो बोले, आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे।
4: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं, इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
3: बहुत ही सकारात्मक बात हुई। हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो जेपीएससी और जेएसएससी में किस तरह धांधलियाँ हो रही है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं आपका जो करके जो भी परीक्षा से रिलेटेड चाहे वो रद्द का मामला हो सीबीआई ईडी की जांच का मामला हो आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर। हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे।
5: हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे, इसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग की है, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है। हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है। इन लोगों का कुछ इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग करें।
0: Let's take it through more updates coming in Adisavo. Now, the RSS chief Mohan Bhagwat has reached out to the Gen Z and the Gen Alpha. Backing their recent protest, he said, dissent is not anti-national and that protests are a part of democracy. Bhagwat even said that he has faith in Gen Z and added that the youth seek logical answers. Furthermore, the RSS chief said the dialogue can only help build consensus. But what caught the attention was Bhagwat's way of connecting with the Gen Z. His clock hit at the end of the interaction went viral. Here's the moment. Take a look.
6: आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं। इसमें समझ में आ गया ठीक है नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं सुलझाना आपके हाथ में है मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा। मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो अर्जेंट है ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व आफ्टर डिस्कशन। दैट डिस्कशन मे हैपन थ्रू डायलॉग ड्यू टू वेरियस रीजन इफ that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब Gen Z की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। Gen Z अगर agitation कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
7: जी सर,
6: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट दी मीडिया ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लार्ज हैकर चाहिए उन्होंने दे देना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट रिजर्वेशन दैट दिस इज फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, improve ourselves and make this useful for others, those who have got here. The existing system if we disturb and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, वी कैनॉट मिक्स दीज थिंग्स. वी हैव टू प्रिपेयर द सोसाइटी फर्स्ट बिकॉज लॉज डोंट डिक्टेट सोसाइटी, सोसाइटी डिक्टेट्स द लॉज. एंड एट दिस स्टेज इफ वी टेम्पर विद द विवाह सिस्टम दैट विल क्रिएट सम अदर साइड इफेक्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. In all the organizations that Swayamsevaks are running, women are shouldering responsibilities with men in equal capacities. Except RSS, there is a reason. When RSS started, if we had started the organization in women also, we wouldn't have thrived. But in apex body of RSS, Akhil Bharatiya Pratin Sabha, all the women working in the public field, they are also invited in the process of decision making. They are there for full 3 days.
0: Let's take it to more updates coming in at the Savo. Now, the government's fresh delimitation push is now gathering momentum. NDTV has learned that an intensive outreach to key opposition parties is now underway to build wider political consensus. Sources say that back-channel talks are continuing with the Samajwadi Party, the DMK, the NCP-SP. Sources even add the DMK has sought assurances regarding its state's interests before taking a final start. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has now learned to have reached out to Rahul Gandhi, asking him for Congress's support for the proposal. Sources say that Rahul Gandhi has suggested an all-party meeting on the issue. At the same time, Tamil Nadu is stepping up its own response, with Chief Minister Vijay, in fact, convening a meeting of all the member parliaments of the state on the 8th of August.
7: आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं,
8: बात किया
7: आपकी बात समझ
8: नहीं नहीं बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है. हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें. हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें. लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा.
9: राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में डिलिमिटेशन को लेकर बात हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा है कि दोनों मुद्दे जो लगातार वो उठा रहे हैं उस पर चर्चा होगी, तभी उसके बाद जो है इस पर वो फैसला ले पाएंगे. तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने दो डिमांड्स पे स्ट्रिक्ट है?
10: 100% जो राहुल जी ने कहा है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है. आपको जवाब दे तो तय करनी होगी. ये नहीं हो सकता कि आप रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करें, नहीं होगा.
9: एक और सवाल है, सरकार की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने डीएमके और समाजवादी पार्टी से बात करने की भी कोशिश की है, जिसमें डीएमके ने ये कहा है कि उनके स्टेट के इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपना फैसला डिलिमिटेशन पे लेंगे. तो आपको लगता है कि डिलिमिटेशन पे डीएमके उनके साथ जा सकता है या आपके साथ खड़ा रहेगा?
10: देखिए, डीएमके को मुझे नहीं लगता कि

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year.

0: Hello and welcome. My name is Reet Kaur Sahani and you're watching Eddie TV. Got a whole lot lined up for you, but let's first take you through the headlines of the hour. RSS Chief Mohan Bhagwat has strongly backed India's Gen Z, saying the youth should be trusted and the democratic protests should not be branded as anti-national. Bhagwat has called for dialogue instead of a generational divide. The centre has stepped up efforts to build consensus on delimitation, with back-channel talks underway with opposition parties. Sources say the outreach comes as political consultations gather pace ahead of a wider discussion. The proposed changes to the FCRA have triggered fresh concerns among Christian organisations. Home Minister Amit Shah has met church leaders, assuring them that there will be no retrospective action as Parliament prepares to debate the bill. The government's engagement with Meta is set to continue, with more meetings expected in the coming few days. Content moderation, algorithms, deepfakes and illegal online content remain at the centre of discussions. Well, recent big breaking news coming in at this hour. Well, the leader of opposition, Rahul Gandhi, has now reached out to Ranchi protesters. Rahul Gandhi has now spoken to the protesters over the phone. There's been a 10-minute conversation that the leader of opposition has had with the Ranchi protesters as Rahul Gandhi reaches out to the Ranchi protesters. He's in fact even spoken to them for 10 minutes is what we're being told. The outreach, remember, comes hours after Rahul Gandhi broke his silence on the Ranchi students' protest.
1: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
2: डेवलपमेंट हियर इन रांची वेयर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केम एंड आल्सो अपेरेंटली राहुल गांधी स्पोक टू सम ऑफ दी स्टूडेंट्स। रविंदर इज वन ऑफ द यू नो स्टूडेंट लीडर हियर। रविंदर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात, जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
3: एसडीओ सर आए थे,
2: क्योंकि
3: हम लोग जो है सो अपना डेलीगेशन का डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर्स है, उसके बारे में उनको अवगत कराया था। हम लोग इंतजार
2: आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से, तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई।
3: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि एसडीओ सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे। आए भी, लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, कल तक क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो।
2: लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
2: डिमांड में या मेंबर्स में
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
2: आपकी बात, क्योंकि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई, आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
3: जी जी, मेरा बात हुआ।
2: क्या कहा उन्होंने?
3: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे। हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम को रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए।
2: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
3: वो बोले, आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो है सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे।
4: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं, इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
3: बहुत ही सकारात्मक बात हुई। हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो जेपीएससी और जेएसएससी में किस तरह धांधलियाँ हो रही है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज मांगे हैं आपका जो करके जो भी परीक्षा से रिलेटेड चाहे वो रद्द का मामला हो सीबीआई ईडी की जांच का मामला हो आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर। हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे।
5: हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे, इसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग किए, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है। हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है। इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग करें।
0: Let's take it through more updates coming in Adisavo. Now, the RSS chief Mohan Bhagwat has reached out to the Gen Z and the Gen Alpha. Backing their recent protest, he said, dissent is not anti-national and that protests are a part of democracy. Bhagwat even said that he has faith in Gen Z and added that the youth seek logical answers. Furthermore, the RSS chief said the dialogue can only help build consensus. But what caught the attention was Bhagwat's way of connecting with the Gen Z. His clock hit at the end of the interaction went viral. Here's the moment. Take a look.
6: आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं। इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व आफ्टर डिस्कशन। दैट डिस्कशन मे हैपन थ्रू डायलॉग ड्यू टू वेरियस रीजन। इफ That thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं, लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब Gen Z की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। Gen Z अगर agitation कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
5: जी सर,
6: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट रिजर्वेशन दैट दिस इज फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, improve ourselves and make this useful for others, those who have got here. The existing system if we disturb and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, वी कैनॉट मिक्स दीज थिंग्स. वी हैव टू प्रिपेयर द सोसाइटी फर्स्ट बिकॉज लॉज डोंट डिक्टेट सोसाइटी, सोसाइटी डिक्टेट्स द लॉज. एंड एट दिस स्टेज इफ वी टेम्पर विद द विवाह सिस्टम दैट विल क्रिएट सम अदर साइड इफेक्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. In all the organizations that Swayamsevaks are running, women are shouldering responsibilities with men in equal capacities. Except RSS, there is a reason. When RSS started, if we had started the organization in women also, we wouldn't have thrived. But in apex body of RSS, Akhil Bharatiya Pratin Sabha, all the women working in the public field, they are also invited in the process of decision making. They are there for full 3 days.
0: Let's take you through more updates coming in at the Savo. Now, the government's fresh delimitation push is now gathering momentum. NDTV has learned that an intensive outreach to key opposition parties is now underway to build wider political consensus. Sources say that back-channel talks are continuing with the Samajwadi Party, the DMK, the NCP-SP. Sources even add the DMK has sought assurances regarding its state's interests before taking a final start. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has now learned to have reached out to Rahul Gandhi, asking him for Congress's support for the proposal. Sources say that Rahul Gandhi has suggested an all-party meeting on the issue. At the same time, Tamil Nadu is stepping up its own response, with Chief Minister Vijay, in fact, convening a meeting of all the member parliaments of the state on the 8th of August.
7: आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, बात
8: किया
7: आपकी बात समझ
8: नहीं नहीं बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है. हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें. हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें. लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा.
9: राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में डिलिमिटेशन को लेकर बात हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा है कि दोनों मुद्दे जो लगातार वो उठा रहे हैं उस पर चर्चा होगी, तभी उसके बाद जो है इस पर वो फैसला ले पाएंगे. तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने दो डिमांड्स पे स्ट्रिक्ट है?
10: 100% जो राहुल जी ने कहा है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है. आपको जवाब दे तो तय करनी होगी. ये नहीं हो सकता कि आप रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करें, नहीं होगा.
9: एक और सवाल है, सरकार की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने डीएमके और समाजवादी पार्टी से बात करने की भी कोशिश की है, जिसमें डीएमके ने ये कहा है कि उनके स्टेट के इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपना फैसला डिलिमिटेशन पे लेंगे. तो आपको लगता है कि डिलिमिटेशन पे डीएमके उनके साथ जा सकता है या आपके साथ खड़ा रहेगा?
10: देखिए, डीएमके को मुझे नहीं लगता कि ये फैसला, चूँकि जो डिलिमिटेशन करना चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने आसाम में बर्बाद किया, ये इस तरह से करना चाहते हैं कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी पूरा डिवीज़न हो जाए और ये लोग देश के अंदर, क्योंकि ये देश विरोधी हो जाएगा, देश के अंदर एक अलगाव की भावना पैदा होगी निश्चित रूप से. ये चाहते हैं कि हिंदी आर्टलैंड के माध्यम से सरकार चलती रहे, बाकी किसी की जरूरत ही ना पड़े.
11: सी वेरी क्लियरली द डीलिमिटेशन बिल इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन, जस्ट लाइक हाउ दे हैव टेकन कंट्रोल ओवर द इलेक्शन कमीशन. That is the exact way they want to do with the delimitation bill. They want to redraw boundaries based on demography, based on communities, based on religion. And you have seen that happen in Assam.
0: We're tracking more updates coming in at this hour. Well, the Modi government is all set to table the Foreign Contribution Regulations Act on the FCRA bill next week. Sources tell NDTV that the Home Minister is likely to be present in the bill in the Lok Sabha on Monday, the 12th of August. The Home Minister held a series of meetings with leaders of minority communities yesterday. He met with the Mizoram Chief Minister and the leaders of the Christian community. According to sources, the Home Minister Shah, in fact, even busted myths around the bill. However, the Christian religious leaders have demanded that the FCRA bill either be withdrawn or be sent to a JPC. The Congress too opposing the bill, with Shashi Tharoor calling it a dangerous escalation in the centralization of executive power. The government says that the bill plugs the gap in the existing law and strengthens accountability. Sources say that the bill will be tabled in its existing form. Well, the Ministry of Information and Technology's heat on Meta is expected to continue for a few more days, with more talks slated for the next 3 to 4 days between the IT minister and their technical team. Discussions are now expected to be focused on technical aspects of Meta's algorithms and how its content moderation policy usually works. This comes after the second meeting that Union Minister Ashwini Vaishnav had last evening. Government sources say that the pressure on Meta will continue after it admitted serious issues, including the CSAM and the deepfakes on its platforms. New directives reportedly included a 3-hour takedown deadline for removing the CSAM, the deepfakes and the AI-generated fake content, as opposed to the earlier deadline of 24 to 36 hours. On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
12: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind you,
17: and we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
12: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
20: BOK ke firing range mein khade hain.
21: Just few inches away.

0: that should be removed, and what are the measures that the Meta team is taking already regarding Prime Minister's video? The apology has been sent across to the government, and our technical team had stated of Meta that official team will be 24/7 monitoring such important accounts in the country, so that no such technical glitch can come on the important accounts of the country as far as the Prime Minister and others are concerned. So yes, a very important meeting that concluded yesterday. The government is in complete engagement with the Meta officials, and the sources have revealed to us that within 3 or 4 days, another round of meeting can take place.
1: Absolutely, of course, more round of meetings expected between Meta and the government as the government goes on to put pressure on Meta and Meta admits its lapses. Thank you so much, Ishwara, for joining us and sharing those important updates with us. We also have some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, an important update coming in as the leader of opposition, Rahul Gandhi, has reached out to protesting Jharkhand students. Rahul Gandhi has now assured students and said that he will raise the issue with Hemant Soren. This is days after the silence of the LOP. Rahul Gandhi has broken his silence and has now reached out to the Ranchi protesters, speaking to them over the phone for at least 10 minutes. The outreach comes hours after Rahul Gandhi broke his silence on the Ranchi students' protest. An important update coming in as the leader of opposition has now spoken to the protesting students in Jharkhand's Ranchi. He's reached out to the students and is even assured that he will be speaking this with the chief minister himself. Now, this is of course days after the Rahul Gandhi breaking his silence that he's reached out to the Ranchi protesters, speaking to them for over 10 minutes. Let's also listen into the reactions coming in on this.
2: Jharkhand ke students apne haq ke liye protest kar rahe hain. Please unko support karein. Dekhiye, student protest jo desh mein ho rahi hai, education system ke khilaf ho rahi hai. मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है. हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो.
3: डेवलपमेंट हियर इन रांची वेयर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केम एंड ऑल्सो अपेरेंटली राहुल गांधी स्पोक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स. रविंदर इज वन ऑफ द यू नो स्टूडेंट लीडर हियर. रविंदर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात, जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
4: SDO सर आए थे. हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है, टोटल 11 मेंबर्स है, उसके बारे में उनको अवगत कराया था. हम लोग इंतजार
3: आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से, तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई.
4: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि SDO सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे. आए भी लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, वो कल तक क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो सकता
3: है. लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
3: डिमांड में या मेंबर्स में
4: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल.
3: आपकी बात क्यों, कुछ कांग्रेस के भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई, आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
4: जी जी, मेरा बात हुआ.
3: क्या कहा उन्होंने?
4: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज़ हमने बताया. वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे. हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम का रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए.
3: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
4: वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे.
1: Let's get you more updates coming in from Jharkhand at this hour as the Jharkhand government officials have met with the protesting students. That's right, Hemant Soren government has opened dialogue with the students as the government team has met with the agitating students. The talks have in fact occurred. The talks are likely to occur after the officials' outreach is what we're learning so far. So the government trying to make an outreach to the students as the Jharkhand government officials have met with the protesting students. An important update coming in from where the students are protesting right now in Ranchi. As the Syrian government opens up dialogue with the students, the government team has met with the agitating students and it's expected that the talks will likely take place after the officials' outreach. So that's of course another big question that's now looming, whether the government will even speak to the students. Remember that they've met with the protesting students. Let's also listen into the reactions coming in.
5: लोग हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे. ऐसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात मत की है. कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है. हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है. इन लोगों का कुछ इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए. इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग आगे करते हैं.
6: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं. इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं. सर, राहुल गांधी से फ़ोन पे बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
4: बहुत ही सकारात्मक बात हुई. हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो JPSC और JSSC में किस तरह धांधलियाँ हो रही है. हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज मांगे हैं आपका जो करके जो भी जो परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो रद्द का मामला हो, CBI ED की जांच का मामला हो, आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर. हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है, छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे.
1: Jharkhand students' protest gathers momentum. The agitation has now entered a new phase. After days of satyagraha and an indefinite hunger strike, the protesters have hit the streets with a massive Tiranga Yatra in Ranchi. They say that their fight is not just about jobs but about the future of Jharkhand's youth and a fair and transparent recruitment system. NDTV's Ankit Tyagi is on ground zero tracking the march and the message that the students are determined to send the government. Take a look at his ground reports.
7: One would have thought that, you know, the tents of the students would be the focal point, would be where you will see the energy and all the protests. But now this entire stadium, this entire ground has become a corner for students who are coming from every nook and corner of Jharkhand with their problems. People, those who are hoping for government jobs, and it is no longer just about JPSC or the JSSC or CGL and others. There are engineering graduates, those who have also come before their demand. This has become now the focal point, and it also highlights the not only the employment situation here in Jharkhand, but also how the students, the young people, feel absolutely trampled. Their dreams being trampled in the system. The rot is so deep. आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं सब लोग. ये सब जरा सहयोगी अश्विन दिखाएंगे आपको ये ऑल दिस बैनर्स दैट दे हैव रिलीज JPSC AE वैकेंसीज. ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की वैकेंसीज हैं उसके लिए भी यहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो आप लोग मुझे पहले बताओ क्या नाम है तुम्हारा भाई?
8: मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर जिले से आया हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और झारखंड के अलग अलग जिले से आए.
7: कहाँ से इंजीनियरिंग करी है तुमने?
8: मैंने BIT सिंदरी धनबाद से करी हुई है. झारखंड का एकमात्र सरकारी संस्थान है.
7: कौन से उसमें करी थी?
8: सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. और यहाँ पे जितने भी है मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कैंडिडेट है, मैक्सिमम सिविल के हैं. तो हमारी जो वैकेंसी आती है JPSC के द्वारा आयोजित होती है, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर. और दुर्भाग्यवश हम ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 26 वर्ष में हमारी वैकेंसी सिर्फ 3 बार आई है, 2007, 2013, 2019. इसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं है. मतलब 7 साल से हम इतने अभागे हैं कि हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक विज्ञापन तक नसीब नहीं हुआ है.
7: कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी जो है JPSC से, JSSC से, CGL से और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं कि उनको मिलेंगी. और जब वो ये सुनते हैं कि उनसे कम नंबर वालों को कहीं ना कहीं जुगाड़ से पैसा देकर नौकरी खरीद ली गई है, उनके ऊपर, परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है. क्या नाम है भाई तुम्हारा?
9: सर, मेरा नाम कोसीलाल प्रसाद है हुआ और हम गिरिडीह जिला का रहने वाले हैं और वो पिछड़ा इलाका है सर. इसमें से हम 15 साल से झारखंड में JPSC और GSSC की तैयारी कर रहा हूं सर। और दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड को चुने सर, शायद हम सेंट्रल को चुने रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते। जितने मेरे दोस्त हैं जो सेंट्रल को चुने वो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht.
2: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
4: Welcome back. My name is Reeth and you're watching EDTV. Well, the RSS chief Mohan Bhagwat has reached out to the Gen Z and the Gen Alpha, backing their recent protest. He said that dissent is not anti-national and that protests are a part of democracy. Bhagwat said that Gen Z and added that the youth seek logical answers. Furthermore, the RSS chief said that the dialogue can only help build consensus. Let's also listen in to what he had to say.
5: Andolan bhi ek dialogue ka tarika hai. हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ यूज कम टूगेदर एंड कॉन्सेंसस इज इवॉल्व आफ्टर डिस्कशन। द डिस्कशन मे हैपन थ्रू डायलॉग ड्यू टू वेरियस रीजन। इफ दैट थिंग इज नॉट हर्ड, एजिटेशन पर जा सकते हैं, लेकिन ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
6: जी सर।
5: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो, क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो दो नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए।
4: Well, you just heard the RSS chief Mohan Bhagwat, but you know what caught the attention was Bhagwat's way of connecting with Gen Z. His clock it at the end of the interaction went viral. Here's the moment. Take a look.
5: Today I learned the expression from you of what I am saying like this.
7: Sir, bas aap kariye saath mein karte clock it.
4: On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: Several students who've been on an indefinite hunger strike in Ranchi, they continue to press for their demands. The Ranchi SDM, meanwhile, met the protesting students at the demonstration site. The students have submitted the names of their participants for talks with the government. And amid the ongoing protest, Rahul Gandhi has also reached out to the students over the phone line. Rahul Gandhi, we're told, held a nearly 10-minute conversation with the protesters. However, the BJP has launched a sharp attack. The BJP alleges that Rahul Gandhi remained silent while the students were protesting and only reached out after the issue gained national attention. Here are the reactions you need to listen to.
1: सरकार की मंशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
2: इतना असंवेदनशील सरकार हमने कभी सोचा भी नहीं था. ये सभी राज्य के पीड़ित और भुक्तभोगी छात्र हैं. आज सत्याग्रह का 13वां दिन हो गया. आंदोलन का शुरुआत किया हुआ तो एक महीना से ज़्यादा हो गया और भूख हड़ताल का 6ठा दिन है. उसके बावजूद और ये सरकार क्या मतलब देखना चाहती है? ये जो JPSC और JSSC का जो वर्तमान स्थिति है, अगर बलिदान के रास्ते आगे बढ़ना भी पड़े तो कोई गलत नहीं है.
3: The development here in Ranchi, where some government officials came and also apparently Rahul Gandhi spoke to some of these students. Ravinder is one of the student leader here. Ravinder, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
4: SDO सर आए थे.
3: क्योंकि
4: हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर्स है उसके बारे में उनको अवगत कराया था. हम लोग इंतजार
3: आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से. तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई?
4: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे SDO सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे. आए भी लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए. कल तक क्लियर कर देंगे फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो सकता
3: है. लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
4: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल
3: डिमांड में या मेंबर्स में?
4: नहीं बिल्कुल नहीं. बिल्कुल
3: आपकी बात क्योंकि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई. आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
4: जी जी मेरा बात हुआ.
3: क्या कहा उन्होंने?
4: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनको ये सारे चीज़ हमने बताया. वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे. हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्जाम को रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए.
3: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
4: वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो है आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे.
5: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं. इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं. सर राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
4: बहुत ही सकारात्मक बात हुई. हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो JPSC और JSSC में किस तरह धांधलियां हो रही है. हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं आपका जो करके जो भी जब परीक्षा से रिलेटेड चाहे वो रद्द का मामला हो CBI ED जाँच का मामला हो आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर. हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे.
6: हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे. ऐसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग की है, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है. हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उससे बात की है. इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया इसलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए. इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग.
7: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें. देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है.

0: मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
1: हुजूर, बहुत देर कर दी आपने आते आते। यहाँ छात्र लगातार नारा लगा रहे थे, हबीबी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने ऐसा लगता था कि सुनना बंद कर दिया था झारखंड की पुकार। लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये प्रेशर बढ़ने लगा तो वो आए भी तो आधे अधूरे संदेश के साथ साथ। वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहते थे। अगर वो चाहते कोई सोल्यूशन तो यहाँ उनकी कोएलिशन की सरकार है, चार चार मंत्री हैं, उनके एक भी मंत्री यहाँ तक नहीं आए। उनके प्रभारी कांग्रेस के सीनियर नेता के राजू बगल के 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं लेकिन छात्रों से मिलने की जहमत नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी कब रांची की सड़कों पर आएंगे, ये युवा जो थे झारखंड के वो मांग कर रहे थे। पर यहाँ ना Page 3 सेलिब्रिटीज के तो न्यूज बनते हैं नहीं, तो राहुल गांधी को यहाँ का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा था।
2: Well, even as the Jharkhand students' protest gathers momentum, this entire movement has now entered a new phase. After days of satyagraha and indefinite hunger strike, the protesters have hit the streets with a massive Tiranga Yatra in Ranchi as well. And they say their fight is not just for jobs, but for the future of Jharkhand's youth and a fair and transparent recruitment system. My colleague Ankit Tyagi has been on ground zero, tracking the march, bringing the message of the students to the country and to the leaders. Listen.
3: One would have thought that, you know, the tents of the students would be the focal point, would be where you would see the energy and all the protests. But now this entire stadium, this entire ground has become a corner for students who are coming from every nook and corner of Jharkhand with their problems. People, those who are hoping for government jobs, and it is no longer just about JPSC or the JSSC or CGL and others. There are engineering graduates, those who have also come for their demand. This has become now the focal point, and it also highlights the not only the employment situation here in Jharkhand, but also how the students, the young people, feel absolutely trampled. Their dreams being trampled in the system. The rot is so deep. आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं सब लोग, ये सब जरा मेरा सहयोगी अश्विन दिखाएंगे आपको ये ऑल दीज बैनर्स दैट दे हैव रिलीज JPSC AE वैकेंसीज। ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की वैकेंसीज हैं उसके लिए भी यहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे पहले बताओ क्या नाम है तुम्हारा भाई?
4: मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर जिले से आया हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और झारखंड के अलग अलग जिले से आए हैं।
3: कहाँ से इंजीनियरिंग करी है तुमने?
4: मैंने BIT सिंदरी धनबाद से करी हुई है, झारखंड का एकमात्र संस्थान है।
3: कौन से उसमें करी थी?
4: सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जितने भी है मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कैंडिडेट है, मैक्सिमम सिविल के हैं। तो हमारी जो वैकेंसी आती है JPSC के द्वारा आयोजित होती है, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर। और दुर्भाग्यवश हमें ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 26 वर्षों में हमारी वैकेंसी सिर्फ 3 बार आई है, 2007, 2013, 2019। इसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं है। मतलब 7 साल से हम इतने अभागे हैं कि हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक विज्ञापन तक नसीब नहीं हुआ है।
3: कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी जो है JPSC से, JSSC से, CGL से और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं कि उनको मिलेंगी। और जब वो ये सुनते हैं कि उनसे कम नंबर वालों को कहीं ना कहीं जुगाड़ से पैसा देकर नौकरी खरीद ली गई है, उनके उनके ऊपर परिवार के ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या नाम है भाई तुम्हारा?
5: सर मेरा नाम कोसीलाल प्रसाद है हुआ और हम गिरिडीह जिला का रहने वाले हैं और वो पिछड़ा इलाका है सर। इसमें से हम 15 साल से झारखंड में JPSC और JSSC की तैयारी कर रहा हूँ सर। और दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड को चुने सर, शायद हम सेंट्रल को चुने रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते। जितने मेरे दोस्त हैं जो सेंट्रल को चुने वो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे हैं। हमने सर बहुत मेहनत किया इसके लिए, JPSC हो, JSSC हो, CGL हो या PGT हो, सर देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में 0.33, 2 नंबर, 1 नंबर से छट जाते हैं।
3: तुम कितनी बार कितने नंबरों से?
5: सर हम अबर PGT का फाइनल DB करवाए हैं, उसके बाद

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,

0: All right, a big focus at the moment, another key political meeting to watch today. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has reached Delhi and is scheduled to meet Prime Minister Modi at 11:30 a.m. today. Now, this meeting comes at a politically significant moment, as sources tell NDTV that the Prime Minister is reviewing the situation across states in the aftermath of the recent Gen Z protests and also holding consultations with leaders of NDA allies. As we've been covering in Maharashtra, the meeting follows the recent induction of six MPs from the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena faction as well. And you must note that these discussions will focus on four key issues, we're told. So far, at 11:30 a.m, Eknath Shinde is expected to meet the Prime Minister in Delhi, and this meeting comes at a politically significant moment. You have to note that Eknath Shinde was actually in Daregaon, actually in Satara, and was planning to head to Mumbai, but then he was suddenly summoned to Delhi. There are many questions that await clarity at the moment. Abhishek Awasthi will be joining us in a few moments from now. This, as we're told, that the meeting is likely to discuss four key issues, beginning with the Union Cabinet expansion, the Shiv Sena hearing in the Supreme Court, the impact of the Gen Z movement, and the Women's Reservation Bill. As I mentioned earlier, Eknath Shinde was in Daregaon in Satara and was planning to head to Mumbai, but then he was suddenly summoned to Delhi. The NDA maintains that these meetings are about governance and coordination, but you know, with the recent defections in Maharashtra and with the fact that Mr. Shinde was told to head to Delhi from Satara, even though he was planning to head to Mumbai, that has raised many questions. Beyond the courtesy call, we are looking at what is the principal agenda of this Modi-Shinde meeting today, as sources say that the Prime Minister is also reviewing the political situation after the nationwide Gen Z protests. As I mentioned earlier, six MPs have also recently crossed over from the UBT camp to the Shiv Sena led by Eknath Shinde. So today's meeting is, of course, crucial, and many questions at this stage remain unanswered. We'll, of course, continue to look at the message that the BJP also wants to send by holding a series of meetings with the NDA leaders over the past 2 days. So another key political meeting to watch today, as Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has reached Delhi and is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi at 11:30 a.m. today. Abhishek Awasthi joins us over the phone line at the moment. Abhishek, tell us, what is the agenda of this meeting beyond the optics of it being a courtesy call? What should one look out for? We are also given to understand that Eknath Shinde was in Satara, he was planning to head to Mumbai, and then he was suddenly summoned to Delhi?
1: Definitely, what we are understanding through sources that he will be on a two-day tour to Delhi, wherein he will also be meeting Prime Minister Narendra Modi, and likely around 11:30 is what being told by sources. And definitely, it's said to be a courtesy meet, but more on the lines, on the backdrop of the Supreme Court hearing, which is currently underway. We can understand that, and several other developments that have taken place. In fact, what we also understand that the MPs who have recently switched from the Uddhav camp are also heading for breakfast today with the Prime Minister. So several important discussions regarding that recently held the protest of by Gen Z and Gen Alpha could also be a point of discussion. And most importantly, the planning of the government to bring in the delimitation bill and the women reservation bill back in the parliament, how to take things forward. Because remember, now one of the largest partner is Eknath Shinde Shiv Sena in the NDA with 13 MPs. So definitely this meeting politically looks very much crucial. And with the Prime Minister, these are the points that could be taken into discussion, though it has been said by the sources that it will be a courtesy meet. And also, important events are being planned in Delhi day after tomorrow also. So a two-day visit is something that we are coming to know from the sources that Shinde will be in Delhi and will be meeting Prime Minister Narendra Modi, likely to meet around 11:30 a.m. is what the sources have revealed. Back to you.
0: Abhishek, we'll of course continue to track all the finer details with you as always. Thanks so much for joining us with the latest. that note, let's turn our attention to Jharkhand now, where students are protesting, demanding a high-level probe into the alleged irregularities in the JPSC and the JSSC recruitment examinations. And that entire situation has intensified on the ground. Several students who've been on an indefinite hunger strike in Ranchi, they continue to press for their demands. The Ranchi SDM met the protesting students at the demonstration site, and the students have submitted the names of their participants for the talks with the government. Amid the ongoing protests, though, Rahul Gandhi has now reached out to the students over the phone, we're told. He held a nearly 10-minute conversation with the protesters. But the BJP has launched a sharp attack on Rahul Gandhi, alleging that he remained silent while the students were protesting and only reached out after the issue gained national attention. Listen in to these crucial reactions before we get in the lowdown with my colleague Prabhakar.
2: Sarkar ki mansa ko leke kya kehna chahenge?
3: Itna asamvedanshil sarkar. हमने कभी सोचा भी नहीं था ये सभी राज्य के पीड़ित और भुक्तभोगी छात्र हैं आज सत्याग्रह का 13वां दिन हो गया आंदोलन का शुरुआत किया हुआ तो एक महीना से ज़्यादा हो गया और भूख हड़ताल का 6ठा दिन है उसके बावजूद और ये सरकार क्या मतलब देखना चाहती है ये जो JPSC और JSSC का जो वर्तमान स्थिति है अगर बलिदान के रास्ते आगे बढ़ना भी पड़े तो कोई गलत नहीं है
4: Here in Ranchi, where some government officials came and also apparently Rahul Gandhi spoke to some of these students. Ravinder is one of the student leader here. Ravinder, सबसे पहले मुझे बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे
5: SDO सर आए थे
4: क्योंकि
5: हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन का डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर से उसके बारे में उनको अवगत कराया था हम लोग इंतजार
4: वो तो आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई
5: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि SDO सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे आए भी लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए कल तक क्लियर कर देंगे फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो सकता
4: है लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन
5: बिल्कुल नहीं बिल्कुल
4: डिमांड में या मेंबर्स में
5: नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल
4: अच्छा, आपकी बात क्योंकि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से
5: जी मेरा बात हुआ
4: क्या कहा उन्होंने
5: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनको ये सारे चीज़ हमने बताया वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम का रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए
4: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको
5: वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे
6: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं इनसे राहुल गांधी की बात हुई है क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं सर राहुल गांधी से फ़ोन पर बात हुई है क्या बताया उन्होंने
5: बहुत ही सकारात्मक बात हुई हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो JPSC और JSSC में किस तरह धांधलियां हो रही है हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं आपका जो करके जो भी परीक्षा से रिलेटेड चाहे वो रद्द का मामला हो CBI ED जाँच का मामला हो आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर हमने रिक्वेस्ट किया सर ने बोला कि ठीक है छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए सरकार से वो वार्ता करेंगे
7: हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे। इसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग की है, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है। हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है। इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग करते हैं।
8: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
9: हुजूर, बहुत देर कर दी आपने आते आते। यहाँ छात्र लगातार नारा लगा रहे थे, हबीबी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने ऐसा लगता था कि सुनना बंद कर दिया था झारखंड की पुकार। लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये प्रेशर बढ़ने लगा तो वो आए भी तो आधे अधूरे संदेश के साथ साथ। वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहते थे। अगर वो चाहते कोई सोल्यूशन तो यहाँ उनकी कोएलिशन की सरकार है, चार चार मंत्री हैं, उनके एक भी मंत्री यहाँ तक नहीं आए। उनके प्रभारी कांग्रेस के सीनियर नेता के राजू बगल के 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं, लेकिन छात्रों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। राहुल गांधी कब रांची की सड़कों पर आएंगे, ये युवा जो थे झारखंड के वो मांग कर रहे थे। पर यहां ना Page 3 सेलिब्रिटीज के तो न्यूज बनते हैं नहीं, तो राहुल गांधी को यहां का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा था।
10: देखिए, ये कॉकरोच, ये सब जो लोग है ना, खटमल, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, किसी का हित में नहीं है। तो केवल केंद्र सरकार को समस्या में लाना और मंत्री का पद तक चाहिए करके आंदोलन दिल्ली में हो गया, लेकिन राज्यों में कई बार क्वेश्चन लीक हुआ है, पेपर लीक, उसका कभी आंदोलन क्यों नहीं होता है? तो वहां जो बच्चे अपने हित के लिए लड़ रहे हैं वहां क्यों नहीं जाते हैं लोग? राहुल गांधी क्या है, माइलेज लेना था, वायरल होना था, हो गया क्या? लेकिन ये जो समस्या है, जो विद्यार्थियों का भविष्य के साथ जुड़ा हुआ, ये समूल उसको उखाड़ना है। केंद्र सरकार ने तुरंत कानून बनाया, लेकिन बाकी राज्यों में भी कानून बना करके इस पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा झारखंड में जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पूरा सरकार इसमें जुड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लोग अरेस्ट नहीं क्यों रहे? कम से कम आप बोलिए, हम कड़क से इसका निराकरण करेंगे। नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति किया उन लोगों ने।
0: Colleague Prabhakar is tracking the latest details for us as the protest in Ranchi is emerging as a broader demand for jobs, for transparency and for justice. Prabhakar, we're given to understand the monsoon session has kick-started amid opposition protests over exam irregularities. Tell us what's going on ground zero at the moment. What can we expect through the course of the day?
11: See, today is the second day of the monsoon session of Jharkhand Assembly, and the government, as we know, has formed a 5-member committee which constitutes of 4 of the ministers and 1 of the senior bureaucrat. They are supposed to engage with students as far as the talks are concerned. The students have themselves formed an 11-member committee, but as of now, the government is saying that they would engage only with

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा,
2: सबको

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: POK ke firing range mein khade hain.
3: Just few inches away is POK.
2: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
1: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
4: नाउ वाचिंग एनी टीवी 24/7 द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
6: अरे मेरे राजा।

0: for a discussion, debate.
1: This is not the correct atmosphere to bring such a bill. You know that the first part was washed out because of the political obstinacy of not dealing with the Pradhan issue. Thereafter, there is an equal political obstinacy of not having either the Honorable Home Minister or the Honorable Prime Minister visiting the Temple of Democracy. In such an atmosphere of distrust and division, to bring such an important bill is completely wrong against all tenets of good governance and democracy and parliamentary democracy.
2: The Joint Action Forum on Minorities, since April, we have been convening various meetings among ourselves throughout India. So we decided to give a detailed representation to the Honorable Home Minister. In fact, we clearly explained that the repercussions and how draconian it is there, how it affects the or violates the constitutional guarantees to the minorities, including to the extent of taking over of the places of worships. That also we pointed out. Honorable Home Minister spent about 1 hour discussing with us, and we had clearly explained to him with an open mind. He has heard us, and he said that he will look into this matter.
3: All right, moving on to the other big stories we're tracking. The government's scrutiny of Meta is far from over. After two rounds of meetings with the Ministry of Electronics and Information Tech, officials say the next phase will focus less on apologies and more on accountability. So over the next 3 to 4 days, Meta's technical teams are expected to hold detailed discussions with the government on how the company's algorithms work, how moderation decisions are taken, and whether the systems comply with Indian law. The meetings follow Meta's admission that serious issues, including child sexual abuse material, deep fakes, errors in content moderation, have surfaced on its platforms, with Meta's chief global affairs officer already apologizing to Ashwini Vaishnav for the temporary restriction of Prime Minister Modi's Facebook video too. You must note that new directives reportedly included a 3-hour takedown deadline for child sexual abuse material, deep fakes, and AI-generated fake content, as opposed to that earlier deadline of 24 to 36 hours. And NDTV has accessed the CBI's 94-page charge sheet in the Newt UG 2026 paper leak case, and it levels explosive allegations against 3 NTA subject experts. The CBI, in this detailed report, claims the experts allegedly copied questions onto chits. They marked NCERT passages during moderation, memorized other questions, and later reconstructed the paper in hotel rooms. Now, according to this charge sheet, you must note, the method was carefully designated to leave no direct trail to the original question paper before the recreated version was allegedly routed through middlemen ahead of the exam. The agency says the alleged motive was financial gain and helping select candidates. These are allegations made by the CBI charge sheet and are yet to be tested in court. Meanwhile, you must note that there are major developments from Jharkhand as well, as the protest by students there demanding a high-level probe into the alleged irregularities in the JPSC and GSSE recruitment examinations have intensified. Several students who have been on an indefinite hunger strike in Ranchi, they continue to press for their demands. The Ranchi SDM, meanwhile, met the protesting students at the demonstration site, and the students have now submitted the names of their participants for talks with the government. And amid this entire situation, as students continue their protest on the streets of Ranchi, Rahul Gandhi has finally reached out to the students over the phone. He held a nearly 10-minute conversation, we're told, with the protesters. But the BJP has still launched a sharp attack, alleging that Rahul Gandhi remained silent while the students were protesting and only reached out after the issue gained national attention.
4: Two category ka demand hai. Ek urgently demand hai, jo short time hai, aur dusra category ka long time taking wala hai. Short time demand puri hone ke baad hi apna anshan todenge. Short time demand mein vivadit parikshaon ko radd karna hai. उसमें कई परीक्षाएं शामिल हैं. टाइम टेकिंग में जांच है, कार्रवाई है, और आगे एक ऐसा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर पेपर लीक, धांधली, पैरवी खत्म हो जाए।
5: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं, इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, राहुल गांधी से फोन पे बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
6: बहुत ही सकारात्मक बात हुई। हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेजी से बढ़ रही है और जो सो जेपीएससी और जेएसएससी में किस तरह धांधलियां हो रही है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज मांगे हैं आपका जो करके जो भी परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो रद्द का मामला हो, सीबीआई ईडी जांच का मामला हो, आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर। हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है, छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे।
7: हम लोग भाई लोग से, अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे, इसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग की है, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है। हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, उससे बात की है। इन लोगों का कुछ इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग
8: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
9: हुजूर, बहुत देर कर दी आपने आते आते, यहाँ छात्र लगातार नारा लगा रहे थे, हबीबी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने ऐसा लगता था कि सुनना बंद कर दिया था झारखंड की पुकार, लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये प्रेशर बढ़ने लगा तो वो आए भी तो आधे अधूरे संदेश के साथ साथ, वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहते थे। अगर वो चाहते कोई सोल्यूशन तो यहाँ उनकी कोएलिशन की सरकार है, चार चार मंत्री हैं, उनके एक भी मंत्री यहाँ तक नहीं आए, उनके प्रभारी कांग्रेस के सीनियर नेता के राजू बगल के 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं लेकिन छात्रों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। राहुल गांधी कब रांची की सड़कों पर आएंगे, ये युवा जो थे झारखंड के वो मांग कर रहे थे, पर यहाँ ना Page 3 सेलिब्रिटीज के तो न्यूज बनते हैं नहीं, तो राहुल गांधी को यहाँ का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा था।
10: मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा झारखंड में जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पूरा सरकार इसमें जुड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लोग अरेस्ट नहीं कर रहे, कम से कम आप बोलिए हम कड़क से इसका निराकरण करेंगे, नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति किया उन लोगों ने।
3: All right, on that note, let's turn our attention to the latest we're tracking at the moment. Prime Minister Narendra Modi's outreach to NDA allies has continued this morning with a breakfast meeting for newly elected MPs from the NCPI and the Shiv Sena in attendance as well. We are told that the Prime Minister urged MPs to be active participants in Parliament, asking them to prepare thoroughly for debates by studying parliamentary history and making full use of the rich archival material that's available in Parliament as well. That's the inside track that we have accessed so far. Prime Minister Modi also underlined that national development begins with strong states, telling MPs to focus on the progress of their respective states, because in his words, only when states move forward will the country move forward. Akhilesh has sent us these details. He joins us over the phone line currently. Akhilesh, this is the second such interaction in as many days. Beyond parliamentary etiquette, though, tell us what larger political message is the Prime Minister trying to send to NDA allies?
11: Well, these are the new entrants to NDA. Remember, 20 TMC MPs have crossed over to NCPI and NCPI has now firmly supported the NDA. For the past 2 weeks, on Tuesday, the NDA MPs are meeting. But 3 Muslim MPs from West Bengal, they were absent. But yesterday, they had a meeting with Home Minister Amit Shah. And today, they had joined Prime Minister Narendra Modi in this breakfast meeting. So, of course, they are being briefed about NDA's larger goal, that how the NDA functions, and apart from that, what is the NDA's philosophy. As Prime Minister Modi told them very clearly that they have to be, you know, aware of Parliament's history. They should participate in the debates. They should be present in the House, and there's a lot of to learn. And in the last meeting, which happened day before yesterday, with the Rajya Sabha MPs, Prime Minister Modi was very clear that they should be aware and alert of the kind of system which works in Delhi. But there are people who try to trap the MPs in different kind of things. So they should be very cautious about all this matter. So 20 MPs from TMC were joined NCPI, and 6 MPs from Shiv Sena UBT were joined Shiv Sena. These 26 MPs today had a meeting with the Prime Minister.
3: As always, Akhilesh, thank you so much for joining us with the lowdown. Well, days after the student protests over recruitment and examination irregularities, with students still protesting in Jharkhand as well, RSS Chief Mohan Bhagwat has made remarks that are likely to resonate far beyond the audience that he was addressing at the time. He was speaking to Gen Z and Gen Alpha students in Mumbai when he said, young protesters should not be labelled anti-national, arguing that if the youth are raising their voices, it's because they are facing genuine problems that deserve to be addressed. His remarks so came at a time when protests over recruitment examinations and education have become politically charged, raising a very crucial question. Will these comments that we've heard from the RSS chief influence the wider political conversation on how governments engage with dissent?
12: Andolan bhi ek dialogue ka tarika hai. Hum yahan baith ke baat kar rahe hain. Isme samajh mein aa gaya, theek hai. नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा. आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा. मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है. A lot of views come together and a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation par ja sakte hai. Lekin ye sab karna hai to evolve the consensus, not to create divisions. Ab Gen Z ki baat hai, तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है. जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी. अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
13: जी सर.
12: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए. वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है. वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए. तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए. तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी. जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो, क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा. उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो दो नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए.
3: ऑलराइट, अलोंगसाइड दैट पॉलिटिकल मैसेजिंग वाज एन अनमिस्टेकेबल एफर्ट एट जनरेशनल आउटरीच एज वेल, व्हिच डिडंट गो अनमिस्ड. Mohan Bhagwat tried speaking the language of Gen Z, ending the interaction with the phrase, clock it, a moment that quickly went viral online.
12: Today I learned the expression from you of what I am saying like this.
14: Sir, bas aap kariye, kariye, saath mein karte, clock it.
3: All right, let's switch tracks now. Today is National Handloom Day. Observed every year on the 7th of August, it commemorates the Swadeshi movement of 1905 and honors the millions of weavers and artisans who keep India's textile traditions alive and roaring. From timeless regional weaves to contemporary fashion, handloom continues to represent India's heritage, our craftsmanship and our sustainable future.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।

0: Rijiju is learned to have reached out to Rahul Gandhi, asking him for Congress support to the proposal. Sources say Rahul has suggested an all-party meeting on the issue. Let's get you the reactions that we are picking up on this big story.
1: आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, बात
2: किया
1: आपकी बात समझ
2: नहीं नहीं बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है. हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें. हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें. लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा.
3: राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में डिलिमिटेशन को लेकर बात हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा है कि दोनों मुद्दे जो लगातार वो उठा रहे हैं उस पर चर्चा होगी, तभी उसके बाद जो है इस पर वो फैसला ले पाएंगे. तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने दो डिमांड्स पे स्ट्रिक्ट है?
4: 100% जो राहुल जी ने कहा है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है. आपको जवाब दे तो तय करनी होगी. ये नहीं हो सकता कि आप रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करें, नहीं होगा.
5: See very clearly the delimitation bill is to take control of the delimitation commission, just like how they have taken control over the election commission. That is the exact way they want to do with the delimitation bill. They want to redraw boundaries based on demography, based on communities, based on religion, and you have seen that happen in Assam.
0: All right, this is a big political showdown inside the parliament and outside as well. The opposition is gunning for the government on the delimitation issue. There was a fresh back-channel outreach from the government and the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju to the opposition, but doesn't seem like that there is any kind of a consensus that has been emerging right now, and a stalemate only continues. Aishwarya, what's the latest that you're picking up on the delimitation issue? There is of course the talk of the special session and the delimitation that could be part of the talks and will be brought inside the parliament, but the opposition does not seem to be working around the idea of the functioning of the parliament or a consensus developing in the back channel talks.
6: Well, the sources in the government have stated to us that the exercise as far as reaching out to the political parties is ongoing, and this has started before the budget session part one, and in continuation to that the government has tried to reach out all the smaller political parties of the opposition as far as the India Alliance is concerned, be it the DMK, Samajwadi Party, NCP, Sharad Pawar faction, Aam Aadmi Party and others. The government has been stating that be it the FCRA or the delimitation, these two are the priority of this government, and they have brought it earlier as well, but this time they wanted to bring with some consensus, and the Congress being the principal opposition party, it is the government which wanted to have a consensus so that a healthy...
0: All right, Aishwarya, we'll cut you here. We are going live across to Rajya Sabha as of now, and this is the live visual that's coming in. There's pandemonium and heavy opposition attack against the government. The latest that we are picking up from the Rajya Sabha right now. Heavy opposition sloganeering inside the Rajya Sabha. The opposition in no mood for a consensus or a debate within the parliament and is attacking the government on several issues, including delimitation, FCRA and the NEET controversy as well. These are the latest visuals coming across from the Rajya Sabha. Let's dip in live.
7: कुंभ स्वरूप या जिला ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने के अवसर से वंचित रह जाती है जो राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व कर सके. हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी भी विकसित भारत की संकल्प के अंतर्गत युवाओं को खेलकूद से जोड़ने एवं उनके स्वास्थ्य सुनिश्चित तथा सशक्त बनाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं. उनका उद्देश्य आधुनिक खेल का विकास कर युवाओं को की प्रतिभा को निखारना, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना तथा खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. अंततः मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, अलीपुर द्वार जिला में एक आधुनिक स्टेडियम की स्थापना शीघ्र स्वीकार स्वीकृति प्रदान

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Institute as well as CCTV footage. Now, CCTV backup was only for 25 days. There was no live monitoring of the control room. Over to you.
1: All right, Bismin, thanks for joining me live there. Now, the agitation by students in Jharkhand demanding a high-level probe into the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations has intensified. Several students who have been on an indefinite hunger strike in Ranchi continue to press for their demands. The Ranchi SDM, who is a senior official, of course, met the protesting students at the demonstration site. The students have submitted the names of their participants for talks with the government. Amid the ongoing protests, Rahul Gandhi also reached out to the students over the phone. Rahul Gandhi held nearly a 10-minute long conversation with the protesters. The BJP has launched a sharp attack on him. BJP has alleged that Rahul Gandhi remained silent while the students were protesting and only reached out after the issue gained national attention.
2: दो कैटेगरी का डिमांड है, एक अर्जेंटली डिमांड है जो शॉर्ट टाइम है और दूसरा कैटेगरी का लॉन्ग टाइम टाइम टेकिंग वाला है. शॉर्ट टाइम डिमांड पूरी होने के बाद ही अपना अनशन तोड़ेंगे. शॉर्ट टाइम डिमांड में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना है, उसमें कई परीक्षाएं शामिल है. टाइम टेकिंग में जांच है, कार्रवाई है और आगे एक ऐसा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर पेपर लीक, धांधली, पैरवी खत्म हो जाए.
3: रांची के जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे छात्र के कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान जी हैं. इनसे राहुल गांधी की बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं. सर, राहुल गांधी से फोन पे बात हुई है, क्या बताया उन्होंने?
4: बहुत ही सकारात्मक बात हुई. हमने झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में बताया कि झारखंड में किस तरह परीक्षा माफिया जो है सो तेज़ी से बढ़ रही है और जो सो जेपीएससी और जेएसएससी में किस तरह धांधलियाँ हो रही है. हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, झारखंड में जो सो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग की जो जायज मांगे हैं आपका जो करके जो भी परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो रद्द का मामला हो, सीबीआई ईडी जांच का मामला हो, आप इसको हमारी मांगों को मनवाइए सर. हमने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि ठीक है, छात्र मुद्दों के साथ हम हमेशा खड़ा हैं और आपकी जो मांग है आप हमको मोबाइल में भेजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे.
5: हम लोग भाई लोग से, अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे. इसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात मत किए, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है. हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है. इन लोगों का कुछ इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए. इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग.
6: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें. देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है. मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है. हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो.
7: हुजूर, बहुत देर कर दी आपने आते आते. यहाँ छात्र लगातार नारा लगा रहे थे, हबीबी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने ऐसा लगता था कि सुनना बंद कर दिया था झारखंड की पुकार. लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये प्रेशर बढ़ने लगा तो वो आए भी तो आधे अधूरे संदेश के साथ साथ. वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहते थे. अगर वो चाहते कोई सोल्यूशन तो यहाँ उनकी कोएलिशन की सरकार है, चार चार मंत्री हैं, उनके एक भी मंत्री यहाँ तक नहीं आए. उनके प्रभारी कांग्रेस के सीनियर नेता के राजू बगल के 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं लेकिन छात्रों से मिलने की जहमत नहीं उठाते. राहुल गांधी कब रांची की सड़कों पर आएंगे, ये युवा जो थे झारखंड के वो मांग कर रहे थे. पर यहाँ ना Page 3 सेलिब्रिटीज के तो न्यूज बनते हैं नहीं, तो राहुल गांधी को यहाँ का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा था.
8: मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा झारखंड में जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पूरा सरकार इसमें जुड़ा हुआ है. कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लोग अरेस्ट नहीं कर रहे? कम से कम आप बोलिए, हम कड़क से इसका निराधार करेंगे, निराकरण करेंगे. नहीं कर रहे, कोई नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति किया उन लोगों ने.
9: When a very big larger issues happening, when larger issues are happening, we are raising it in parliament, we are protesting.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: सरसों
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी Every
12: day. What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
4: Watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आग और मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
1: SDO सर आए थे,
2: क्योंकि
1: हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन का डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर से उसके बारे में उनको अवगत कराया था हम लोग इंतजार।
0: वो तो आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से, तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई?
1: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि SDO सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे। आए भी लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, कल तक क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो सकता
0: है। लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
0: डिमांड में या मेंबर्स में
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
0: आपकी बात क्योंकि कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई, आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
1: जी जी, मेरा बात हुआ।
0: क्या कहा उन्होंने?
1: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे। हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम को रद्द और CBI जाँच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए।
0: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
1: वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो है आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे।
3: हम लोग भाई लोग से अपने भाई लोगों से बातचीत करने आए थे, ऐसी तरह का नॉर्मल इनफॉर्मल बात हम लोग की है, कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं हुआ है। हम लोग बस आज कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है उस पर बात की है। इन लोगों की तरफ से ही कुछ फ़ोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। इन लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग करते।
4: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
5: Alright, a complete political slugfest over the protest that's happening in Ranchi. And joining us live is Ankit Tyagi, my colleague, who's been relentlessly, you know, filing reports continuously, and NDTV has been tracking each and every development from that particular protest. Ankit, good to see you. But, you know, the protesters that you spoke with have a lot of expectations, but doesn't seem like the government has even started a sustained dialogue process with them. They've sent out an SDM, but what more are you hearing? On the other hand, the slugfest, the political slugfest with the BJP and Congress, you know, trading barbs at each other. What to expect over the next 24 to 48 hours?
0: You know, it's very important. It's a 14th day now, Aditya, and hopefully there is some movement forward. Actually, the talks are stuck at only one point. The government has, in fact, told the protesters that they will only speak to the student leaders, because in the 11-member committee that was formed by the student leaders, 8 of them were student leaders, and then apart from that, there was a journalist, a lawyer, and also, an educational expert. So the government is saying that they do not want the journalist and anybody else to be part of that. They only want the student leaders to be part of the conversation, because the problem is of the students and the government has to resolve it. So hopefully by today, the student leaders have now gone back. They have reconvened a meeting and they are trying to, in fact, formalize their delegation, which is going to meet the government. So hopefully the expectation is by today or maximum by tomorrow morning, there is going to be some sort of a conversation. Now, on the other hand, Neha Bora, the general secretary of ISA, she was here. And the left student unions, they had taken out this protest march. They were trying to go towards the Vidhan Sabha. The march convened here. After this, they have gone back. And it was a very dramatic, in fact, morning as well, where she came in and met the protesters, met both the camps, where on one hand is Devendra Mahato, on the other, of course, the students, those who have been protesting for the last

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाह मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आग और मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy.

0: What is the answer? And Rahul Gandhi ji is speaking for the students of the entire country, and that has to be decided and discussed here. That has to be, the answer should be said by Home Minister. Why the students were attacked? Why the FIRs are still not quashed? Now, instead of that, they want to again point fingers on Rahul Gandhi ji, who is the voice of students. Look, he is again going to Prayagraj. Again, he had traveled to Tamil Nadu. He was in Kota and Rajasthan. He went up to Prime Minister's residence demanding justice for students.
1: Now for the RSS's Gen Z reach out, and Chief Mohan Bhagwat's outreach to Gen Z has sparked a political sparring match with BJP and opposition leaders reacting to his remarks on youth and dissent. RSS Chief Mohan Bhagwat backed the recent youth protest, that the Jantar Mantar protest, saying that dissent is not anti-national, protests are part of democracy, and he has faith in Gen Z's ability to seek logical answers. He stressed that dialogue is key to building consensus, but Karnataka Minister Priyank Kharge hit back, accusing the RSS and BJP of desperately updating their vocabulary while their ideology remains unchanged, saying that same sang, just different slang. BJP MP Kangna Ranaut has welcomed Bhagwat's outreach, calling him highly respected and saying it is a matter of great joy that young Indians are emerging as ambassadors of the country's heritage. Remember, she had earlier called them a generation gutter.
2: Today I learned the expression from you of what I am saying like this.
3: Sir, bas aap kariye kariye saath mein karte clock it.
4: They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji.
5: Gen Z जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको भी जो है मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका जो उनकी जो विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है. हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का अम्बेसडर बन के उभर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है.
6: देखिए, मोहन भागवत जी को भाजपा को सीधा संदेश देना चाहिए. ये कोई इनडायरेक्टली मैसेज भेजना वगैरह ये सही नहीं है. एक आरएसएस एक बहुत बड़ी संगठन है और आरएसएस के आदेशों पर सरकार चलती है. तो सरकार को और विशेषकर अमित शाह जी को, भागवत जी को चाहिए कि सीधा उनको बताएं, संदेश वंदेश नहीं दें, बताएं कि आप युवाओं से बातचीत करिए, उनकी बात सुनिए और अमित शाह जी को बताइए कि आप पार्लियामेंट में चाहिए, सामना करिए और अगर कुछ गलती हो तो स्वीकार करिए.
7: इफ वी हैव एनी सिंसियरिटी टू द Gen Z, लेट हिम आस्क टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिसाइन, अदरवाइज एटलीस्ट कम टू द पार्लियामेंट एंड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स एंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. RSS is controlling the government. If he have any sincerity towards the students, he has to condemn them. The atrocities happened against the students, pellet gun, lathi charge, and the students is asking for that only. Why keeping mum on that? But these are all completely eye washing.
3: मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि Gen Z को एंटी नेशनलिस्ट मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज है. तो उन्होंने जो ये चीज़ कही है मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है, क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम है. और जो नितिन नबी जी भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे.
1: Alright, some breaking news now coming in. Developments in Tamil Nadu Chief Minister Vijay and his wife Sangeeta's divorce case. Remember, this is a very high profile divorce case in Tamil Nadu ever since Vijay became Chief Minister. Now the news coming in is that the case has been withdrawn by Sangeeta. The matter will therefore not proceed any further in court following this withdrawal. So this high-profile divorce case involving the

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आकर मसाला।
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
10: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
11: हरियाणा।
10: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
11: डेढ़ महीने पे।
10: आपकी फैमिली है?
11: और
10: बच्चे हैं?
11: 3 साल।
10: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
11: बहुत।
10: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
11: सिनेमा घर तक अलाउड।
10: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
9: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
12: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
14: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
4: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
6: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
4: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
3: आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: सिनेमा तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watch Prime 5 with me, Aisha Sahil. What's happening? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
6: Join me, Aisha Sahil, on Prime 5 only on NDTV 24/7.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
3: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
4: और
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: सिनेमा तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
5: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ। The show that sets the prime time agenda. We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake. Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
4: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: सिनेमा तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
6: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद रेशा सेगर और सैंडी। The show that sets the prime time agenda. We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake. Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: तैयार करना है जिस पर पेपर लीक, धांधली, पैरवी खत्म हो जाए।
1: हुजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, यहाँ छात्र लगातार नारा लगा रहे थे हबीबी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने ऐसा लगता था कि सुनना बंद कर दिया था झारखंड की पुकार, लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये प्रेशर बढ़ने लगा तो वो आए भी तो आधे अधूरे संदेश के साथ साथ, वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना चाहते थे। अगर वो चाहते कोई सोल्यूशन तो यहाँ उनकी कोएलिशन की सरकार है, चार चार मंत्री हैं, उनके एक भी मंत्री यहाँ तक नहीं आए, उनके प्रभारी कांग्रेस के सीनियर नेता के राजू बगल के एक किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं लेकिन छात्रों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। राहुल गांधी कब रांची की सड़कों पर आएंगे, ये युवा जो थे झारखंड के वो मांग कर रहे थे, पर यहां ना पेज थ्री सेलिब्रिटीज के तो न्यूज बनते हैं नहीं, तो राहुल गांधी को यहां का आंदोलन पसंद नहीं आ रहा था।
2: Since we are talking about leader of opposition Rahul Gandhi, ladies and gentlemen, yesterday in the night when I had come here, that was the time when Rahul Gandhi made a phone call. His representatives were here and they came and spoke to the students. In fact, a phone call was arranged where one student leader, Ravindra, who is part of the delegation, Ravindra spoke to the leader of opposition, Rahul Gandhi. I caught up with him just to try and understand which way is this protest going at this moment. And also, what did Rahul Gandhi tell all of them? Listen in. Development here in Ranchi, where some government officials came and also apparently Rahul Gandhi spoke to some of these students. Ravinder is one of the, you know, student leader here. Ravinder, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे?
3: SDO सर आए थे। हम लोग जो सो अपना डेलीगेशन का डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है टोटल 11 मेंबर्स है उसके बारे में उनको अवगत कराया था। हम लोग इंतजार
2: वो तो आपने दोपहर में बता दिया था कि 11 लोग बात करेंगे सरकार से, तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई।
3: हम लोग इंतजार ही कर रहे थे SDO सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे, आए भी लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, कल तक क्लियर कर देंगे फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो सकता
2: है। लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
2: डिमांड में या मेंबर्स में
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
2: आपकी बात क्यों, कुछ कांग्रेस से भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई, आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से?
3: जी जी मेरा बात हुआ।
2: क्या कहा उन्होंने?
3: राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वार्ता करेंगे। हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्ज़ाम को रद्द और CBI जांच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जाँच करवाइए।
2: तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको?
3: वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे।
2: It started to rain again and that, as I said, is no deterrent for these young people. See the sarcasm in what they are trying to do. You will see around 15th August there are going to be a lot of sales. The big billion day sale is their offer on JPSC, JSSC seats too. ये आप यहाँ पर ये क्यों लेकर आए?
4: सरकाज़म
2: बिकॉज़ यू थिंक इतना आसान है यहाँ पे सब सीटें बिक रही?
4: हाँ बहुत आसान है और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हर चीज़ का सेल चलता है तो इस चीज़ का भी तो चल ही सकता है। हाँ। जब इतने खुलेआम हो रहा है तो फिर उसको अमेज़ॉन पे भी डाल दीजिए, हो सकता है वहाँ से भी बिक जाए।
2: व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप?
4: PhD स्कॉलर। यस।
2: और आप यहाँ पर मतलब डेली आ रहे हो क्या?
4: आ रहे हैं पिछले 5-6 दिन से आ रहे हैं एंड मतलब मजा आ रहा है प्रोटेस्ट में आके।
2: हाँ। It's raining right now.
4: It's raining and as you can see I have put my raincoat and
2: some of them have not. Many of them without umbrellas. छाता वाता नहीं लेकर आए हो?
5: ना मैं।
2: बताओ मेरे छाते के नीचे हो।
5: Yes please. हाँ। Yes. हाँ।
2: अब आप क्यों आए हो यहाँ पे?
5: मैं हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने आए हैं। See इसका पॉइंट बेसिकली यही है कि जब जब महंगाई आती है कुछ कुछ ऑफर्स आ जाते हैं और अब जब यह है कि पेपर लीक हो रहा है फिर कुछ लोगों के थ्रू जा रहा है फिर कुछ बाबू लोगों के थ्रू जा रहा है फिर कुछ लोग जा रहा है फिर आ रहा है स्टूडेंट्स के पास, तो रादर या सीधा स्टूडेंट्स को भेज दो यार थोड़े बहुत ऑफर लगा के
2: सीधे अमेज़न पे डाल दो।
5: हाँ क्योंकि अगर मेहनत के थ्रू नहीं मिल पा रहा है सबको अपॉर्चुनिटी जो मिलना चाहिए जिस तरीके से,

0: भाई सबको कम से कम थोड़ी सी डिस्काउंट में अपॉर्चुनिटी मिल जाए भाई, दैट्स द सरकाज़म ऑफ दिस पोस्ट।
1: सीधे सीधे अमेज़न पे डाल दो, पिक्स को खरीदना को खरीद ही लेगा, बिकॉज पेपर तो बिकी रहा है। बट दैट्स ट्रू, यू नो द बिगेस्ट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज अबाउट ट्राइंग टू ब्रिंग सरकाज़म इनटू इट, मेक दैट पॉइंट। वेयर आप कहाँ से आए हो, वेयर आर यू, आप कहाँ से आए हो मैडम?
2: मैं यहीं से हूँ, रांची से।
1: थैंक्स। टेल मी वन थिंग, आप सरकार अब बात करने की बात कर रही है, आपको लगता है कि इस बार कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा या ये सिर्फ ऐसे ही चलने?
2: ऐसे नीट पेपर लीक हुआ था तो एजुकेशन मिनिस्टर को बोला था, तो अभी उन्हें रिजाइन दे दिया, तो हम ऑल वी कैन डू इज वेट एंड होप। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि ये लीक, ये करप्शन बंद हो जाए। और मुझे इस प्रोटेस्ट में नहीं आना है, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, लेकिन मुझे नहीं आना है। मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए प्रोटेस्ट, और हमें नहीं करना पड़ा ये। लेकिन आयरनी है कि हम आ रहे हैं रोज और हमें करना पड़ रहा है ये, तो बस।
1: 14 days it has been. Sorry, it's raining very hard now. A lot of these young people say it's not that out of choice that they are protesting. The government has forced them, has put them in a position where protesting is the only way. Ma'am, I'll come to you. Before that, I want to tell you that today, Neha Bora, who was one of the faces of the Jantar Mantar protest, the General Secretary of AISA, she was here. A lot of controversy around when she came. Some people were happy, some were not. After 14 days, she decided to come here. They also took out a protest march, and in that protest march, ink was thrown at her. Let's listen into what she said after that.
3: आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, थाने में पुलिस के पास है वो इंसान। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप लोग इस कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए। आपसे अपील करूंगी, हम भी जाएंगे थाने। नहीं, ऐसे कोई स्पेकुलेशन हम नहीं करते हैं। इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही ताकतें करती रही हैं जिनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, छात्रों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए इस तरीके का मार्च, जो छात्र अपने हित के लिए जेपीएससी के खिलाफ उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको डिसरप्ट करते हुए वहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हिंसा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं।
1: Ashwini will show you how hard it is raining at this moment. Everything has come to a standstill. You know, they are trying to expand that tent that you see. They are trying to expand, and I don't know why. I'm under an umbrella and I'm still getting wet. Is umbrella mein bhi chhed hai. There are holes in this umbrella, like there are holes in the education system here in Jharkhand as well. But yesterday in the night, and you know, when people, every evening, a lot of people come because they're going back from their work. They come here to show support. But in the night, when the noise quietens, there are those who have been here for the last 14 days. I caught up with some of the protesters, those who feel that they are fighting a battle for their future, for their life. Listen it. Here at Vijaypal Singh Munda Stadium in Ranchi, where the protest against the examination paper leak, OMR discrepancies and everything else has been taking place here. The crowds are fewer, not as much as they were. Some people still here, and there somebody is distributing some raincoats, and you would see a mad scramble there to try and catch those raincoats. But beyond all this, are these young people on the stage settling in now for the night, some of them tired through the day, singing songs, raising slogans, keeping the morale high of this entire protest. And while they are recuperating at this moment, there are still many, those who have been coming here, talking to people, and you know, every place that you turn to, you will find so many stories of personal struggle, disappointment, frustration, a system which is completely rotten to the core that has disappointed and dashed their hopes. I want to just talk to a few of them. Didi, aap kahan se aayi hain?
4: Sir, main Odisha se aaye.
1: Aap yahan, tabiyat aapki kharab lag rahi hai.
4: Haan sir, tabiyat mera to kharab hai. Jo bhi pareshani hai, लेकिन मेरा तबीयत का पीछे बच्चे लोग जो अंधेरा में बैठे हैं वो बहुत बड़ी परेशानी है। इस कारण से एक माँ दौड़ के आ गई कि हमारे बच्चे को न्याय मिले।
1: Still there is, as I said, a lot of these people, those who have, you know, a lot of enthusiasm when it comes to the protest here. और मैं कुछ और लोगों से भी कोशिश करता हूँ, अब रात में बैठे हुए हैं जो लोग, भाई लोग पूरे दिन गला खराब हो गया तुम्हारा, मैं देख रहा
0: हूँ। हाँ, वो गला बट गया, बोल बोल के नारा लगा रहे थे हम लोग।
1: आते नहीं हो,
0: आवाज़ पहुँच नहीं रहा है, क्या करें, हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं ना, इसलिए ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं और इसीलिए आवाज़ दब गया। अब तो हम डर रहे हैं कि गला भी बट गया, अब आवाज़ कैसे पहुँचेगी, जब चिल्ला रहे तब आवाज़ नहीं पहुँच रहे।
1: इतना जोश कहाँ से लाते हो,
0: क्या करें, जब अपने
5: फ्रस्ट्रेशन है, जोश नहीं फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, 2015 से लेके 26 का फ्रस्ट्रेशन है, इतना पेपर लीक हुआ है झारखंड में, उसका फ्रस्ट्रेशन है हम लोग का। सब चीज़ में ध्यान दी, कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो जो सरकार फेयर तरीके से कराई हो, सब में घपलाबाजी किया सरकार।
1: कितने साल हो गए आप लोगों को तैयारी करते हुए?
0: मैं 2016 से कर रहा हूँ, पूरे 10 साल हो गए। 10 साल में 3 मेंस लिखा हूँ JPSC का, 2 इंटरव्यू दिया हूँ और आज यहाँ पे बैठा हूँ। इस हालत में सरकार खड़ा कर दिया कि हम रोड पे बैठे हैं जैसा।
1: अब जैसे आपने बोला 10 साल से तैयारी कर रहे हो, तो घर वाले को भी बड़ा नाउम्मीदी लगती होगी कि नहीं हो पा रहा है, कैसे?
0: घर वाले पूछते हैं और कितना दिन दोगे, 2 साल तो बचा है, खराब हो जाएगा, कुछ कर लो। और क्या करते हैं,
1: कर लो में क्या, अब क्या करो,
0: अब पता नहीं क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं चल रहा ना कि क्या करेंगे। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि 14 JPSC अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी से अगर हो जाता तो इसमें कुछ ना कुछ उम्मीद था। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भविष्य क्या होगा, अंधकार सा लगता है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग।
1: बोल रहे हैं ना कि भविष्य अंधकार लगता है, आपको ये बता देता हूँ कि झारखंड देश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला स्टेट है, और वहाँ से जो बच्चे हैं अगर वो अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं तो ये आयरनी शुड बी समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लिसन टू। पहले ये बताओ कि एक छात्र आप क्या करते हो, कितने बार पेपर दे चुके हो?
6: नहीं, मैं इस बार JPSC का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। अब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे साथ इस तरह का धांधली का जो स्थिति है, पूरे जो 2000 से लेकर अभी तक 14वें JPSC में जिस तरह से धांधली होते हुए 14वां जो JPSC है ये भी धांधली हो गई, जिसके खिलाफ में हम लोग।
1: सिस्टम से थोड़ी सी उम्मीद बची है या सब उम्मीद खत्म है?
6: देखिए सर, यहाँ पे
0: उम्मीद है तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं होती, सरकार को हमने चुना, हमारा सरकार है और उम्मीद है तभी तो हम अपना आवाज पहुँचाना चाहते हैं।
1: क्यों आए हो रंजीत यहाँ पे देवघर से?
7: सर, CGL के एग्जाम दिए हुए हैं, JSSC CGL का, गिरसेन लेवल का होता।
1: कैसे पहुँचे हो यहाँ तक, थके हुए लग रहे हो?
7: हाँ सर, थके हुए थे, 29 तारीख से आए हैं।
1: उनतीस
7: तरह से कंटिन्यू है अपन।
1: कितनी बार तुम पेपर दे चुके हो?
7: फिर यहाँ पर से 2016 से लेकर 2026 तक एग्ज़ाम दिए हम।
1: 10 साल से?
7: 10 साल से तैयारी किए, झारखंड का किए। अगर हम झारखंड का किए नहीं हो पाया, कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम में अनियमितताएँ होते रहती है, पेपर लीक हो गया, पेपर को सीट भेज दिया जाता था, पहले ही हम लोग सिर्फ मोहरा बनते थे, कोई कैंडिडेट है एग्जाम देने आया है।
1: हमारे जो दोस्त थे तुम्हारे साथ जिन्होंने पढ़ाई शुरू की, वो क्या क्या करते हैं? सब अलग अलग जगह पे सेट हो गए हैं?
7: हाँ, अलग अलग जगह पे सेट हुए हैं, कोई कोई बिहार में है, आपको कोई झारखंड में भी है।
1: बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दोज़ हू यूट्यूबर्स एंड अदर्स, दोज़ हू आर हियर, सम ऑफ देम आर स्लीपिंग एट दिस मोमेंट। देयर आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट SDM हैज कम और सम ऑफिशियल हैज कम who is speaking to the protesters, to the delegation of the protesters. Remember, 11 members of the committee have been formed, a delegation has been formed, who will be going and speaking to the government. There is no clarity on when that conversation, when that, when those talks are going to happen. But what you see, ladies and gentlemen, what you saw at Jantar Mantar and then what you are seeing here, this is just change of place. The frustration, the hope, the feeling of helplessness, the feeling that you are being robbed, and absolute distrust in the system, that transcends whether it is Delhi, whether it is Ranchi. And if there is not a serious attempt which is made by the governments, then trust me, this is not the last protest that you are going to see, not the last city that is going to stand up against their government, because these youth, these young people, are fed up of excuses and all they want is concrete action. You know, if I can, I know, especially in Delhi, a lot of people are saying that it's really raining there. But if I can tell you, it is really, really coming down here. Everywhere people are trying to find some sort of a shade. I'm standing under an umbrella. And as I said, it's full of holes like the education system here in Jharkhand. Barish tez ho rahi hai, bahut zabardast. Aap ab itni barish mein bhi khade hue hain yahan par, kyun?
8: इसलिए खड़े हुए क्योंकि हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन हमारे अभी सिस्टर है, हमारा भाई है जो नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद भी उस छाता ऊपर, हाँ, नीट का उसने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम पेपर लीक होने के कारण 620 नंबर उसका आ रहा था, उसके वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद दूसरा जब एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम, तो उस टाइम वो हॉस्पिटल में था, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ से नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ। हम लोग, हम तो देवघर से हैं, झारखंड देवघर बाबा नगरी
1: जी।
8: जब हमारा वहाँ पे जब टाइम था ग्रेजुएशन करने का, तो जब हमने एडमिशन लिया वहाँ पे, तो एडमिशन लेने के बाद पता चला कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हुआ।
1: That has been a problem that I've always, when I've spoken to a lot of people, has been, in fact, something that they have highlighted in Bihar, in Jharkhand. It's very, very difficult to stand here at this moment, the amount of rain which is coming in. But let me tell you that there are many volunteers, those who come out and have been distributing raincoats to people, those who have been coming and protesting here, free of cost. I caught up with one of them. Listen in. On this site here in Ranchi at the stadium, there are a lot of people, those who are coming and helping out. मुझे भाई साहब दिखाई पड़े, क्या नाम है वो आपका?
9: जी, मैं सचिन कुमार।
1: सचिन, ये क्या बांट रहे हो?
9: ये रेनकोट बांट रहा हूँ सर, जैसे कि आप आज देख रहे हैं, भारी बारिश के बावजूद भी लड़के लड़कियाँ अपने हक अधिकार के लिए, सरकार को झुकाने के लिए यहाँ पर भींग के भी आ रहे हैं, तो मैंने ये रेनकोट का
1: जैसा रेनकोट खुद पहना है वैसा ही
9: रेनकोट। आइए, हाँ जी जी जी बिल्कुल, आइए गर्ल्स, आइए,
1: लड़कियों को दे रहे हैं आप रेनकोट?
9: जी जी, फर्स्ट प्रायोरिटी लड़कियों को दे रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ भींग के भी चाह रही है बदलाव आए। लड़के तो एडजस्ट कर लेंगे, लड़के मजबूत होते हैं। लड़कियाँ आज घर से, रूम से बाहर निकले हैं ताकि झारखंड का स्थिति बदले, सरकार झुक।
1: चलिए, सो ये यू विल सी, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू हिम, बहुत सारे कलर के इनके पास रेनकोट भी हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों को रेनकोट दे रहे हैं।
9: पढ़ के किताब को भी छोड़ के आए हैं, हम भी लाइब्रेरी से कॉपी किताब छोड़े
1: आपके लिए। लोग भी, आप लोग भी स्टूडेंट हैं? कहाँ से हो?
10: यही हम रांची से ही, मेरा छाता भी अभी खो गया।
1: उसका छाता खो गया तो उसको बेचारे को दे दो।
9: अभी जस्ट मैं भी एकदम इसी तरह था, देखिए

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Welcome to Nationwide at 6. Viewers, as always, you're watching NDTV. This is Nationwide at 6, and I'm Aditya Raj Kaul. There's monsoon mayhem all across the country, but particularly in the national capital, Delhi, as well. There's been a red alert. Heavy rains are lashing Delhi, triggering severe waterlogging and major traffic disruptions across several parts of the capital, prompting the Indian Meteorological Department to issue a red alert. The IMD forecast moderate rainfall at many places, with isolated heavy showers accompanied by thunderstorms and lightning over the next few hours. Now, major traffic snarls were reported on the Mehroli-Badarpur Road, in ITO, Wazirabad Road, Patil Road, Rohtak Road, as well as Shankar Road, Kirti Nagar, the Delhi-Jaipur Highway and Shaheen Bagh, while several areas including Dakshin Puri, Okhla and Sangam Vihar reported waterlogging as well. Rainfall recorded by today morning included 59.2 mm at Safdarjung and 60.4 mm at the Lodi Road in South Delhi. The weather office has forecast light to moderate rainfall in Delhi through August 10, indicating the rain-related disruption could continue over the next coming days. It's a big development coming at this hour, even as there's been monsoon mayhem all across the country. In Delhi, there are several parts that are completely waterlogged. Even as I speak right now, there is fresh rainfall that is happening. Over the next few hours, there's a red alert that's been issued in India's national capital, Delhi, till about 8 p.m. Our reporters are covering this from all parts of the capital. For the next few minutes, we'll be getting you exclusive reportage from on ground. Kanika Katiyar joins us live right now from ITO. There's Deeksha Bhardwaj as well, who's reporting live. Kanika, coming to you first. You're reporting from ITO, and that's one of the major spots of the traffic snarl, really. It's a peak hour right now. What's latest that you've picked up? What can you tell us?
1: देखिए बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, नेशनल कैपिटल के कई इलाकों में लगातार जो है पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, वहीं मौसम विभाग की ओर से जो है रेड अलर्ट जारी किया गया। लेकिन मेरी मौजूदगी अभी आईटीओ पे है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए किस तरह से, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है और इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऑफिस के लोग जो है वो अपने घर की ओर निकल रहे हैं, लेकिन आईटीओ का ये इलाका है जहाँ पर लगातार ट्रैफिक जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। और लगातार दिल्ली में इस तरह की बारिश जो है वो पिछले कई घंटों से देखने को मिल रही है। पिछले दो दिन से लगातार दिल्ली में इस तरह की बारिश और तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो है आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि रात 8 बजे तक रेड अलर्ट जो है दिल्ली में इशू किया गया है, जिसमें कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जो है जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये दिल्ली की आईटीओ की है। यहाँ पर तमाम जो लोग इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं उनको ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आमतौर पर लोगों को यहाँ पर पानी भरा जो है वो दिखाई दे रहा है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो कई इलाकों में है। सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल इस समय वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल ट्रैफिक जो है वो स्मूथ है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ पर लगातार ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि रात 8 बजे तक रेड अलर्ट है दिल्ली के सेवरल प्लेसेस में, इस तरह की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कल से ज़्यादा बारिश जो है वो दिल्ली में आज देखने को मिली है, और अभी भी लगातार जो है बारिश जारी है, जिसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो लोगों को हो रही है। इसके अलावा जो लोग आम तौर पे सड़कों से गुजर रहे हैं उनको भी जो है ट्रैवल करने में प्रॉब्लम जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है।
0: जी, कनिका कटियार हमें बता रही हैं कि कैसे मूसलेदार बारिश अभी जारी है दिल्ली में, देश के अलग अलग कोनों में भी, और अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है क्योंकि एक रेड अलर्ट इशू किया गया है। दीक्षा भारद्वाज इज ऑल्सो जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम पटपरगंज एरिया ऑफ दिल्ली। दीक्षा, व्हाट कैन यू टेल अस? यू बीन इन सेंट्रल दिल्ली रिपोर्टिंग फॉर अस ऑल थ्रू द डे, एंड नाउ एट पटपरगंज देयर आर सेवरल बॉटलनेक्स दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑल अक्रॉस। इट्स अ पीक आवर, मेजर ट्रैफिक स्नार्ल्स, बट ऑल्सो हेवी रेनफॉल दैट ओनली कंटिन्यूज।
2: Aditya, this may have been a reprieve from the heat for the national capital, but as I can tell you, not for a single minute has there been a break in the torrential downpour in East Delhi. I can show you visuals behind me where you can see that there are several...
0: Right. Okay. there's some technical glitch because of the rainfall. We'll get back to Deeksha in a bit from now, but these are the latest visuals coming to you from central Delhi, not very far from the Bharat Mandapam. This latest visual coming on your screen and multiple visuals that we are showing for your viewers of the bottlenecks that have been created, heavy traffic all across Delhi, and a red alert issued by the IMD over the next couple of hours. We also have Reeth Sahni joining us, and we'll go to Reeth, but Deeksha is back. Deeksha, please go on.
2: Yes, as you can see behind me, there are several visuals of cars and people who are stranded at the bus station. They are waiting to catch their transportation. I'm so sorry about the technical problems. As you know, in the rain, it is difficult to go ahead with the mic. But what I can tell you is that there has not been a single 5-minute break from the downpour in East Delhi. In central Delhi, coming to East Delhi, there are traffic jams, especially on the linked roads where the traffic is concentrated. You know, like I said, it may have calmed down the heat, but it seems that these predictions are going on. We are tracking this live. I can try and show you more visuals of how the cars and everything are piling up. Here in a central corner, right next to Mother Dairy, which is a very crucial junction in Parparganj.
0: All right, Deeksha, please stay safe because that's the priority right now. You've been relentlessly reporting from the rainfall, both Kanika and Deeksha. But Reeth is also joining us live. She's been tracking, climate and environment for us very, very closely here on NDTV. Reeth, what's the latest that you're picking up from Noida itself? Because Delhi might be almost submerged in water, but there's Noida also that's been facing heavy rainfall all through the day.
3: Right, absolutely. Aditya, I hate to say this, but Noida is also not quite far behind when it comes to rainfall numbers. You know, I was just having a conversation with IMD officials who also now go on to state that, you know, different parts of not just Delhi, but the national capital region could see light to moderate rainfall and even thunderstorms over here. So light thunderstorms as well as, some sort of rainfall is also expected in these parts. Like my colleagues have been reporting, there's been waterlogging all around. You know, we've also been drenched ever since morning, of course, waiting for the downpours to stop. But like my colleague was mentioning, that, you know, we've seen downpours all throughout. Let me also take you to the crucial points. And yesterday I was at the IMD and they were also talking about how this was expected. Remember that this may be a break from the humidity, from the dust and the pollution, and even from, of course, summer temperatures. But this is, of course, coming as a big problem to the citizens of the National Capital Region, owing to the fact that, of course, we are having to deal with traffic jams and waterlogging as problems that, of course, accompany with rain. So big problems right over there, of course, we're tracking the data closely from the IMD. And as for the data that's coming in from the IMD, you know, Safdarjung of Delhi is impacted the most, with the most amount of rainfall in all of National Capital. As of now, as we speak, there's been a warning, a red alert that's been issued just now for the next 3 hours up till 9 p.m., in which it says that almost any and every part of Delhi is now under the red category, which is the red warning zone. So authorities will be looking out at it closely. For the next 3 hours, the national capital remains in the severe category. The rainfall over here is in the red zone, so we could expect heavy showers as well as a little bit of lightning and as well as thunderstorms.
0: All right, Reeth, tracking the developments very closely from Noida. Reeth, stay with us because I want to get back Kanika Katyar for us, who is at a very important bottleneck point, and that is the ITO. That's next to the income tax office and the DDA building as well. It's a major bottleneck connecting East Delhi with the central part of Delhi, and it is also connecting Noida as well. Kanika, aap hame aur kya jankari de sakti hain? Kyunki abhi jo samay ho raha hai kareeban 6:40, bahut sare log jo daftaron mein hain central Delhi mein, wo East Delhi ki aur Noida ki taraf jo hai rujhan karenge apna aur wahan jayenge. Lekin abhi traffic ki sthiti kaisi hai aur kya abhi bhi barish chal rahi hai?
1: देखिए बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से अभी समय हो रहा है, लगातार जो लोग भी सेंट्रल दिल्ली में वर्किंग है उनके लिए अभी फिलहाल ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है फेस करने को उनको मिल सकती है. और फिलहाल देखिए आईटीओ, क्योंकि दिल्ली का ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से नोएडा की तरफ, दिल्ली की तरफ लोग जो है ट्रैवल करते हैं. फिलहाल आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक है वो लगातार देखने को मिल रहा है और बहुत लंबा ट्रैफिक जो है वो आगे तक जो है लगा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश जो है सुबह से दिल्ली में देखने को मिल रही है. और इसी के लिए जो लोग भी नोएडा या दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं सेंट्रल दिल्ली से, उन लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती है. इसके अलावा जो है दिल्ली में रात 8 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं. केवल सेंट्रल दिल्ली नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली तो वेस्ट दिल्ली में भी जो लगातार जो है ट्राफिक

0: उनको फिलहाल ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। और इसीलिए हम विजुअल दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह से देखिए हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे है, और करीबन पिछले एक घंटे से लगातार ये ट्रैफिक जो है यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ये जो टाइम है वो ट्रैफिक का टाइम है। लोग अमूमन इसी वक्त पे अपने दफ्तरों से घर की तरफ निकलते हैं। एक तरफ हम देखा जाए तो एक रास्ता नोएडा की तरफ जाता है, एक तरफ दिल्ली की तरफ जाता है, और जो लोग भी नोएडा, दिल्ली या कई अन्य इलाकों में आईटीयू से ट्रैवल कर रहे हैं, फिलहाल उनको ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल सकती है। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है कि पिछले अगले 3 घंटे तक यानी कि करीबन 8 बजे तक रेड अलर्ट रहेगा और तेज बारिश जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है।
1: जी, कनिका कटियार हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं NDTV पे ITO से। और कनिका, दीक्षा एंड रीत, प्लीज स्टे सेफ बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट एज यू रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड। देयर इज रेनफॉल, देयर इज ट्रैफिक, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीज यू नो कमिंग डाउन, सो प्लीज बी सेफ and alert as you continue to report. Thank you very much for joining in. In fact, we will be heading for a short break, viewers, here on NDTV. But as the red alert continues on the climate and the rainfall, we at NDTV will be tracking that very closely. Return after a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इसे फायर,
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आर्टिकल मसाला।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका
3: राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: POK ke firing range mein khade hain.
7: Just few inches away is POK.
6: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
1: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
1: When stories have impact.
9: जे एन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। ये अभी जो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: So who's winning the race for Gen Z adulation, Gen Z attention, and maybe the Gen Z vote when it comes back? We've got the RSS chief clocking it. People, taking photographs in the rain, vertical videos at midnight. So the five of us are going to be sitting on Chai Stop and talking about who's winning the Gen Z's attention. That's on Chai Stop tonight.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: 5-year-old RSS chief has clocked it. Mohan Bhagwat participated in one of the world's largest youth-led conferences in Mumbai on Thursday.
1: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है
2: अरे वाह बढ़िया है
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है
3: आप जो दिलुलु में ना रहना कि वो आप
0: फ्रॉम रैलीज टू रील्स द ग्राउंड टू द ग्राम पॉलिटिशियंस एंड देयर पार्टीज आर ट्राइंग टू क्रैक द जेन जी कोड Prime Minister Narendra Modi's Instagram strategy has already become a talking point, with reels often posted late at night to maximize engagement among young users. From digital campaigns to youth-focused messaging, the target audience is unmistakable, India's Gen Z.
4: Friends, I know that the paper leak is not a mamooli vishay. थैंक यू फ्रेंड्स कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया
5: फ्रेंड्स विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है
0: The opposition too isn't far behind. From casual rainy day posts to Batman, Rahul Gandhi is hopping onto the Gen Z bandwagon too. Clock it, Riz, Delulu, these aren't just trending words in social media anymore. They've made their way into parliament.
6: Agar main Gen Z ki bhasha ko borrow karu, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
7: 37 din tak to ye jantar mantar nahi gaye. To inko MIA ho gaya. MIA kya hai? MIA missing in action. Andolan kyun kiya aapne? उनको फोमो हुआ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट
8: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए
9: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे वास्ते गुने हुईया एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है
3: इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं हमारे साथ भी नहीं है शोर शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चले
0: For political parties, the message is clear. Winning elections is no longer just about traditional vote banks. Mobilizing Gen Z could be just as important. A generation raised on smartphones, social media and instant access to information is becoming one of the country's most influential electoral forces. The battle for India's future may well begin with the battle for its youngest voters. Bureau Report, NDTV.
10: Hello and welcome to Chai Stop, the beloved NDTV show where editors, reporters get together every once in a while to kick around the big topic of the day. And do I really need to introduce the topic of the day, guys? It's Gen Z. Obviously, it's Gen Z, right? But before I kick into the topic tonight and ask a question, Vasudha, our political editor, managing editor Padmaja, our executive editor Gauri, and our latest boomer on the block is Rahul Srivastav who's just had a ghar vapsi here at NDTV
11: I skew the average age here
10: you know when I told people on yes. Twitter that Rahul Shri is back there was like a huge meltdown over there sir where will your digital videos be where yes. will we see you where will we see your wonderful opinions well this is the answer to that At least on Chai Stop, every single week, you will be seeing Rahul Srivastav. So welcome, Rahul. It's fabulous to have you back. And you cannot miss these shows. Rain or shine, you've got to be on it because I've got huge pressure from your audience, for God's sake, saying where is Rahul Shri.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों।

देश का टायर, जेके टायर। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: prena tu sataranga.
1: Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura. Rang, rang, rang, rang, rang, rang, rang, re, dek. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
2: Bojo paints, rang bana rahe.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
2: सबको

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: BJP Akali Dal reunion, the political signals, electoral arithmetic and the legacy of Badal Vajpayee alliance are now back in the sharp focus. Sources are saying that Badal has raised concerns over Punjab's law and order situation and alleged the corruption under Bhagwat Mann government. While there is no official confirmation of the alliance talks, the high profile meeting has reignited political buzz over whether the BJP and the Akali Dal could come together again after ending the decade long partnership in 2020.
1: सुखबीर बादल साहब की पीएम से मुलाकात हुई है, क्या गठबंधन की संभावना है?
2: अब ये तो वही जाने भैया, मुझे तो आप बता रहे हैं।
1: मुलाकात की खबरें तो है मैम,
2: पता नहीं कहाँ हुई, मुझे तो मैंने तो देखा नहीं।
1: क्या गठबंधन की संभावना है मैम बीजेपी अकाली में पंजाब?
2: मैं कैसे बता दूं भैया कौन क्या बात कर रहा है।
0: Now, while there are talks that are still underway for a possible reunion between the BJP and the Akali Dal, here's a look at what the Prime Minister had said against the Akali Dal back in July 17th in Jalandhar.
3: और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है, वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं, उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है।
0: The FCRA amendment bill has sparked a fresh political debate in the parliament. The centre says that the changes are aimed at improving transparency, strengthening the oversight of foreign funding and even preventing the misuse. But the opposition argues the proposed amendments give the government sweeping powers over NGOs and could even shrink the space for civil society. And DMK Rajya Sabha MP P. Wilson, who has been among the voices opposing the bill, also spoke in the parliament. Here are some reactions that are coming in.
4: I have already written about it. It's a very bad idea. I have already written about it. It's a very bad idea.
5: Already DMK has declared that it is against the FCRA amendment bill. So we had, so far as I am the chairman of the Joint Action Forum on Minorities, and the religious heads have met yesterday. So we have discussed with them, and the Honorable Home Minister has, with open mind, has discussed. So let's hope for good things to happen.
6: On one hand, churches are vandalized, churches, Christian preachers, priests, fathers are attacked, arrested. All these are happening in different parts of the country. And also, this government is trying to bring in FCRA. Once they tried to bring in, the entire opposition stood united and opposed it, it was sent back. Then they tried to bring in through backdoor, through a delegated legislation. That also we opposed. Now they are again trying to bring as a legislation. We will continue to oppose this. The Christian fathers, bishops, they have made the stand very clear. They are not, this is not for the good of the country or for the good of those who are doing good service to the poor and charity. NGOs will not be allowed to be strangled like this.
0: Government's fresh delimitation push is gathering momentum. NDTV has learned that an intensive outreach to key opposition parties is underway to build wider political consensus. Sources say that the back-channel talks are continuing with the Samajwadi Party, the DMK and the NCP-SP. Sources have added that the DMK has sought assurances regarding its state's interest before taking a final stand. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju is learned to have reached out to Rahul Gandhi, asking him for the Congress's support to the proposal. Sources have also told NDTV that Rahul has suggested an all-party meeting on the issue. Political reactions coming in on the top story.
7: आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं,
8: बात किया
7: आपकी बात समझ
8: नहीं, नहीं बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से, मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
9: राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच में डीलिमिटेशन को लेकर बात हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि दोनों मुद्दे जो लगातार वो उठा रहे हैं उस पर चर्चा होगी, तभी उसके बाद जो है इस पर वो फैसला ले पाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने दो डिमांड्स पे स्ट्रिक्ट है?
10: 100% जो राहुल जी ने कहा है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है। आपको जवाब दे तो तय करनी होगी, ये नहीं हो सकता कि आप रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करें, नहीं होगा।
11: सी वेरी क्लियरली द डीलिमिटेशन बिल इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन जस्ट लाइक हाउ दे हैव टेकन कंट्रोल ओवर द इलेक्शन कमीशन दैट इज द एग्जैक्ट वे दे वॉन्ट टू डू विद द डीलिमिटेशन बिल दे वॉन्ट टू रीड्रॉ बाउंड्रीज बेस्ड ऑन डेमोग्राफी बेस्ड ऑन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड यू हैव सीन दैट हैपन इन असम।
0: And now moving on, the Meketatu row is intensifying in Tamil Nadu, with Chief Minister Vijay making it amply clear that there will be no compromise on the state's Kaveri rights or its stand against the project. Vijay says his government has passed a resolution written to the Prime Minister and met him over the issue as well. He also has hit back at the DMK, citing a 1969 assembly debate, but said that he does not want to play politics over the Kaveri water issue. Meanwhile, the leader of opposition in the state of Tamil Nadu, Udayanidhi Stalin, has accused the Karnataka government of aggressively pushing Meketatu and questioned even as to why was Vijay government not calling an all-party meeting, alleging that it leaks plans and then takes the U-turn. The AIADMK has called DMK and TVK partners in crime, while the BJP says that Vijay gave no reassurance to Tamil Nadu and refused an all-party meeting as well.
12: அந்த குறுவை சாகுபடிக்கு அந்த நிவாரணம் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு, வழங்கியாச்சு. இது வந்து அரசியலே நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு இது எப்படி தெரியாமல் போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. முன்ன பின்ன பேப்பர் படிச்சிருந்தா நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்.
13: அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டணும்னு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டு வருகின்றோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சியும் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள். ஏன் கேட்டுக்கிறோம்னா, கர்நாடக முதலமைச்சரும் அந்த அரசும் மேகதாது விஷயத்தில் மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றார்கள். June 11 ஒன்றிய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமனை கர்நாடக முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரில் பார்த்து மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு நிதியுதவி வேண்டும் என்று கோரிக்கை வச்சிருக்கிறார். June 12 ஒன்றிய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சர் திரு சி ஆர் பட்டீல் அவர்களை நேரில் பார்த்து மேகதாது திட்டத்திற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வச்சிருக்கிறார்.
5: ஐ திங்க் ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் விஜய் இஸ் நாட் பிரீஃப் ப்ராப்பர்லி ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மேகதாது டேம். DMK has taken considerable steps when it was in power, and the Supreme Court ultimately said, look, it is only a DPR, it is only an initial stage, therefore we are not expert in that, so you place all your objections before the appropriate authority, and that is what the Supreme Court said. I am not going to interfere, it is only premature stage. Our Chief Minister decided that let's take this as a separate water dispute issue and let us go before the tribunal to be constituted by the union government under the Interstate Water Disputes Act. And that is why on 4th of March 2026, a letter was addressed to the Jal Shakti Minister saying that this is a water dispute, it is a standalone issue, even though the Supreme Court has given the verdict in our favor in 2018 itself. So this amounts to interdicting with the judgment of Supreme Court. So you constitute a tribunal.
0: Well, our next story is about squadron leader Bhavna Kant. She's just become the first woman ever to graduate from the IAF's elite Top Gun school. But this is a story 8 years in the making. Back in 2021, Bhavna was already making history. The first woman fighter pilot to march the Republic Day Parade, one of India's original pioneering trio in the cockpit, from that runway to this record. She's still rewriting the sky. Here's her story.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।